कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे बन जाऊंगी, वो तेरे बन जाऊंगी, सब तेरे बन जाऊंगी। मन तो साथ है, दिल में भी रात है, तू क्यों उदास है।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, उन पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। पछताना ना

0: जन्म की बधाई है बधाई है, माँ के राम जन्म की बधाई है बधाई है, माँ के राम जन्म की बधाई है बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।
1: भर भर के कनक थाल, भर भर के

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराओ रे
1: मुझे पाल गाड़ी तेज चलाओ रे चलाओ चलाओ चलाओ रे काहे दिया घबराओ रे मोरा काहे दिया घबराओ रे रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे पाल
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।